0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर.
2: शुक्रवार 26 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आपके साथ एक पूरे घंटे का साथ है और कोशिश रहेगी कि आपके लिए वो सब हो जिसकी आपको उम्मीद रहती है हमसे और आप हमारे साथ पूरे समय बने भी रहें, अपने संदेश भी भेजते रहें, जो भी अच्छा बुरा लगे हमें बताते भी रहें. और श्रोताओं, बताती चलूं कि कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एशियो की चेतावनी की. भारत से रिपोर्ट के अलावा बात करेंगे भारत के एक शहर के बारे में जो अक्सर हमें दिखता है फिल्मों में, गानों में. वैसे भारत में कौन सी ऐसी लोकप्रिय जगह हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी दिख जाती हैं, जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं. बस आप मुझे लिख भेजिएगा 04397997667 पर. और अभी पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 26 जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. पैराग्वे के खिलाफ मैच के बाद सकुरुज ने वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड में जगह बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया. ये तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचा है और पहली बार ऐसा लगातार टूर्नामेंट में हुआ है. सकुरुज ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर हैं. देशभर में लाइव साइट्स फैंस से भरी हुई थीं. वेनेजुएला में सैकड़ों लोग मलबे में फंसे हुए हैं. राजधानी काराकस और उसके आसपास के इलाकों में आए दो जोरदार भूकंपों से तबाही मच गई है. अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 188 लोग मारे गए हैं और ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है. लगभग 1500 लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग लापता बताए गए हैं. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी का कहना है कि उन्हें वेनेजुएला में आए भूकंप के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने एबीसी को बताया कि प्रभावित लोगों में ऑस्ट्रेलियाई भी शामिल हो सकते हैं और सरकार इस संभावना के लिए तैयारी कर रही है. पार्लियामेंट्री जांच में पता चला है कि पिछले 10 सालों में आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के खिलाफ नस्लवाद, नफरत और हिंसा बढ़ रही है और इसके रूप बदल रहे हैं और फैल रहे हैं. पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जब उसकी बुजुर्ग मां वेस्टर्न सिडनी के एक एज्ड केयर होम में मृत मिली. कल रात 25 जून रूटी

0: हिल एज्ड केयर होम पर इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया, जहां उन्हें एक 84 साल की महिला की लाश मिली। भारत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस मामले में नामजद सभी 8 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार कल गुरुवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन सभी पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की, यानी आज के खेल का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
1: सोकरूज ग्रुप डी में नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं, जबकि इक्वेडोर ने ग्रुप ई में जर्मनी को बेहद करीबी मुकाबले में हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 15वें दिन के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं नबील हसन। सोकरूज ने पैराग्वे के खिलाफ 0-0 के ड्रॉ के बाद नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी पोपोविच ने स्टार्टिंग 11 में 6 बदलाव किए और पहले हाफ में ऑस्ट्रेलिया ने काफी आगे बढ़कर खेलते हुए कई प्रॉमिसिंग मौके बनाए। पैराग्वे की मेन स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलियन अटैक को रोकना था और उनके डिफेंसिव सेटअप ने पहले 45 मिनट में सोकरूज को काफी फ्रस्ट्रेट किया। दूसरे हाफ में पैराग्वे ने ज्यादा अटैकिंग अप्रोच अपनाई, लेकिन अंत में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिससे ये रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदेमंद रहा। मिडफील्डर जैक्सन इरविन ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई।
2: Amazing, two World Cups in a row, two second places. It shows the kind of steps we've made, but this was the kind of expectation for us. Now we've got to go and do something, you know, no Australian team's done before and win a knockout game. I think the first hour, we were really good, much more positive in the game than the last couple as well, which is, gives the boys a good feeling, you know. And really good. Like, listen, at the end of the day, we knew a point was enough.
1: ऑस्ट्रेलिया अब ग्रुप जी के रनर अप से भिड़ेगा, जिसमें बेल्जियम, इजिप्ट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और न्यूजीलैंड शामिल हैं। दूसरे ग्रुप मैच में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर अपने टूर्नामेंट का शानदार अंत किया। दोनों टीमों को मैच से पहले ही अपना रिजल्ट पता था। अमेरिका ने टॉप स्पॉट सिक्योर कर लिया था, जबकि तुर्की पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। ग्रुप ई में इक्वेडोर ने स्कोर में पीछे रहने के बाद 4-time वर्ल्ड चैंपियंस जर्मनी को 2-1 से हराया और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। जर्मनी ने अपने पहले दो मैच जीत कर पहले ही ग्रुप में टॉप स्थान हासिल कर लिया था। कोट डिवोर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वालिफिकेशन हासिल की। ग्रुप एफ में स्वीडन और जापान दूसरे स्थान के लिए मुकाबला कर रहे थे और 1-1 के ड्रॉ ने जापान को ये जगह दिला दी। स्वीडन ने बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स में से एक के रूप में आगे बढ़ने का मौका हासिल किया, जबकि जापान अब राउंड ऑफ 32 में ब्राजील का सामना करेगा। इसी बीच नेदरलैंड्स ने ट्यूनिशिया को 3-1 से हराकर ग्रुप में आराम से पहला स्थान हासिल कर लिया और नॉकआउट स्टेज में मोरक्को के खिलाफ मुकाबला तय किया। कल डे 16 पर 6 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप आई में नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा, जबकि सेनेगल का सामना इराक से होगा। ग्रुप एच में यूरुग्वे स्पेन से बढ़ेगा और कैबो वर्डे का मुकाबला सऊदी अरेबिया से होगा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड का सामना बेल्जियम से होगा, जबकि इजिप्ट की टक्कर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से होगी। आप सुन रहे थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 15वें दिन का वर्ल्ड कप डेली अपडेट। मैं हूं नबील हसन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हर पल को SBS और SBS ऑन डिमांड पर लाइव और फ्री देखें।
0: कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहें, अपने संदेश भी भेजते रहें 0439-799-767 पर, और आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: CBS Audio. अपने मन पसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
6: यही ज्यादा दिया। चुनबे हालम।
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
11: Far from the partisan politics.
12: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
13: sbs.com.au/audio।
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं पूछ रही थी कि भारत में कौन सी ऐसी लोकप्रिय जगह हैं जो बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, और जिन्हें आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, गानों में देखते हैं। तो बस आप उसके बारे में सोचिए और मुझे लिख भेजिएगा। और अभी बात करते हैं एशियो की तरफ से आई चेतावनी और उन चिंताओं की। एशियो ने बताया है कि दिसंबर में बोंडाई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया गया है और अभी भी टेरर का स्तर संभावित है, लेकिन सर्विस अपने वार्निंग सिस्टम का रिव्यू करेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्पाई चीफ ने चेतावनी दी है कि अभी भी सिस्टम जनता के सामने आने वाले खतरे को कम करके बता रहा है। एसपीएस हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार।
14: When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked, but we shouldn't be surprised. When hackers exploit known vulnerabilities to compromise, we are shocked, but we certainly shouldn't be surprised. When anti-Semitism grows after being tolerated and normalized, we are shocked, but we should not be surprised.
0: एजियो के डायरेक्टर जनरल माइक बर्जेस ने अपने सालाना भाषण में ये बात कही है जो एजेंसी के अभी के आतंकी खतरे यानी टेरर थ्रेट के असेसमेंट का हिस्सा हैं। भाषण से पता चला है कि एजियो ने दिसंबर में बोंडाई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया है। नेशनल स्पाई एजेंसी के बॉस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का अभी का खतरा संभावित है, जिसका अर्थ है कि अगले 12 महीनों में ऑनशोर अटैक या अटैक प्लानिंग का 50% से अधिक मौका है, लेकिन उनका कहना है कि इससे पूरी कहानी पता नहीं चलती।
14: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
0: जिस सिक्योरिटी माहौल की वो बात कर रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलियाई लोगों के ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का खतरा, विदेशी एंटिटीज का दखल शामिल है। एजियो ने ऑस्ट्रेलिया से मजबूत लिंक वाले दो लोगों की पहचान की है जिन पर ईरान की तरफ से यहूदी टारगेट पर हमला करने का आरोप है। माइक बर्जेस का कहना है कि ईरान में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने 2024 में बोंडाई में एक बिजनेस पर फायर बॉम्बिंग की साजिश रची थी और इराक में रहने वाला एक पुराना ऑस्ट्रेलियाई निवासी मेलबर्न के एडास इजराइल सेनेगॉग पर हमले के पीछे था। बर्जेस

0: कहना है कि दोनों ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प से जुड़े थे और एजियो जानता है कि वे कौन हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि जांच जारी है। इंटेलिजेंस रिस्क के सीईओ नील फर्गस, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चैनल 9 के टुडे शो में बताया कि ये हमले विदेशों में हुई ऐसी ही घटनाओं के बाद हुए हैं।
1: If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks against the Jewish Ambulance Service and Golders Green, against the Bank of America in Paris. There's no mass casualty attacks, thank God, involved in that.
2: Yeah.
1: But I think Burgess is correct to say we've got to be absolutely on our guard at the moment.
0: एजियो की चेतावनी के साथ कि राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड हिंसा के कामों की संभावना बढ़ रही है, गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने एबीसी रेडियो को बताया कि अभी एक दशक पुराने टेरर थ्रेट वार्निंग सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है।
3: There is a review that's happening on that. That's right. And different countries, particularly our Five Eyes partners, everyone does it a slightly different way, and we're looking at that. The thing that matters is making sure that the Australian people, but also all the law enforcement agencies, get the best possible information.
0: Liberal Senator Jonathan Dunham का कहना है कि अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो बदलाव प्राथमिकता होनी चाहिए.
4: All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including, of course, Bondi, are extreme concerns for us as a country. If the legal regimes need revisiting, if the framework around how we deal with terror-related matters need revisiting, then let's do that as a matter of urgency.
0: इस बीच जब ऑस्ट्रेलिया की स्पाई एजेंसी अपनी टेरर थ्रेट गाइडेंस जारी कर रही थी, तो तथाकथित इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नेटवर्क है, उसके एक सदस्य के पार्टनर को देश में फिर से प्रवेश दे दिया गया। सीरिया में रह रही महिला पर पहले एक टेम्परेरी एक्सक्लूजन ऑर्डर था, जिसे हटा दिया गया ताकि वो घर आ सके। बर्ग ने एबीसी रेडियो को बताया है कि महिला के लौटने पर उस पर बहुत उच्च स्तर की निगरानी, यानी हाई लेवल का सर्विलेंस होगा।
3: But we received the final advice yesterday that we can no longer have an exclusion condition any longer for her. We've checked with our agencies, they are ready. So that permit gets issued. What it then means is the conditions that do apply to her are everything that is possible. So, for example, she will have to report, and we will have to know where she lives, where she works, where she studies.
0: National Party ke leader Matt Canavan ka kehna hai ki sarkar desh ki raksha aur suraksha ke paksh mein khadi nahi hai.
5: We feel the government should have done more to keep people like this who have associated with terrorist organisations, the world's worst terrorist organisations in the world, they should have been kept out of our country.
0: कल हुई ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस का विषय भी ऑस्ट्रेलियाई जमीन के बाहर से सिक्योरिटी के खतरे थे। इसका विषय था सिक्योरिंग द रीजन फॉर अनसर्टेनिटी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर पीटर डीन ने क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे का सामना करने के लिए एजियो की तैयारी की बात दोहराई है। उनका कहना है कि एक देश के तौर पर आत्मनिर्भरता ही कुंजी है। उन्होंने 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति यानी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का जिक्र किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए यूएस पर निर्भरता खत्म करने की बात कही गई है।
6: That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential against a major power threat to look like? And as the NDS tells us, it's starting to look like more industrial self-reliance.
2: Yeah.
6: It's starting to look like more national resilience and social cohesion. It's starting to look like civil preparedness. It's starting to look like all of these things.
0: जब विशेषज्ञों ने देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात की, तो रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने ऑकस के भविष्य पर अपनी राय दी। ये अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। मास्क का कहना है कि वो इस डील के प्रैक्टिकल होने और भविष्य को लेकर हो रही आलोचना को स्वीकार करते हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और एएसपीआई यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के पहले प्रमुख की आलोचना भी शामिल है। लेकिन उनका कहना है कि ये डील ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है।
7: In regards to all three countries, we have now seen changes of government in terms of political persuasion in all three, whilst the commitment to AUKUS has been maintained in all three.
0: लोवी इंस्टीट्यूट

0: एक पोल के अनुसार इस डील को जनता का भी सपोर्ट है। लोबी इंस्टीट्यूट के सर्वे में यह भी पाया गया कि इतिहास में पहली बार अधिकतर ऑस्ट्रेलियाई असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन चार्ल्स लियोन जोन्स समेत रिसर्चर्स का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी से काम करने पर भरोसा कम होने के बावजूद लगभग 3/4 जवाब देने वाले ऑस्ट्रेलिया का यूएस के साथ अलायंस का सपोर्ट करते हैं।
1: And what that shows is that Australians remain pragmatic about the global environment we face and understand that world events impact here at home.
0: SBS News के लिए कैमली बियांची और SBS हिंदी के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे एक रिपोर्ट कि एशियो यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक चेतावनी और चिंताओं के बारे में। और जैसा कि मैं पहले बात कर रही थी कार्यक्रम में, आज हम आगे बात करेंगे भारत के एक जाने माने शहर के बारे में जो अक्सर हमें दिखाता है बॉलीवुड, और कभी कभी वो हॉलीवुड में भी दिख जाता है। वैसे भारत की कई ऐसी जगहें हैं जो फिल्मों की लोकेशन के लिए लोकप्रिय हैं। कुछ जगहें आपको याद आ ही रही होंगी, तो बस क्यों ना आप मुझे लिख भेजें। वैसे हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी ने याद किया है मुंबई को, और भी कई जगहें हैं, बस याद कीजिए और लिख भेजिए 0439-799-767 पर। और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
2: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
3: They track, they target, prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: sbs.com.au/hindi ko apna online home banaiye. Taza tareen khabrein apni bhasha mein paiye. sbs.com.au/hindi par jaayein. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
0: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम, और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, जैसा कि मैं बात कर ही रही हूं कि आज भारत के एक ऐसे शहर की बात भी करती चलूंगी जो بالی ووڈ فلموں میں دکھتا ہے یا کبھی کبھی وہاں پر گانے فلمائے جاتے ہیں. اور اسی میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ کچھ خاص جگہ بھارت کی ایسی جو اکثر فلموں میں دکھائی دیتی ہیں یا کبھی آپ نے دیکھی ہو اور آپ کو بہت پسند آ گئی ہو, تو کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. چلیے وہ تو آپ یاد کریں گے ہی اور مجھے آپ اپنے سندیش بھی بھیجیں گے ایسی مجھے امید ہے. اس سے پہلے ایک گانا سنتے چلتے ہیں. اب اس گانے کو سنتے چلتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ فلم بھی یاد ہوگی, اس کے کلاکار بھی یاد ہی ہوں گے, اور سب سے ادھک مہتوپورن بات یہ کہ اس کی لوکیشن بھی آپ کو یاد ہی ہوگی. تو بس آپ یاد کیجئے کہ یہ کہاں پر ہے.

0: तो श्रोताओं, याद आया कि ये कौन सी फिल्म है और कलाकार कौन है और इसको कहाँ पर फिल्माया गया, यानी ये गाना अगर शहर नहीं तो भारत के कौन से राज्य में इस गाने को फिल्माया गया था। तो मुझे आप इसके बारे में लिखिएगा। और आइए चलते हैं भारत की ही ओर, हमारे संवाददाता विश्व रत्न के साथ भारत की ये रिपोर्ट।
1: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से पुलिस में दर्ज शिकायत में 8 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि चंपत राय जैसे बड़े नामों का उल्लेख इस FIR में नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव होने के चलते चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने पूरे मामले पर लीपापोती का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात दोहराई है। इस मामले में समाजवादी पार्टी की बयानबाजी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा,
2: प्रभु रामलला हम सबके आस्था के केंद्र हैं और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा। जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है, जो भी दोषी होगा उसमें बचेगा नहीं, प्रभु रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी को, अपनी अंतरात्मा पर एक बार जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश और प्रदेश जनता क्या चाहती है।
1: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस गड़बड़ी की जांच कर रही SIT को कुछ सबूत दिए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए कहा,
3: SIT को मैंने जो कागजात सौंपे हैं, 11 दस्तावेज के सेट सौंपे हैं, जिसमें 2 दस्तावेज एक साथ जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित कागजात दिए हैं और जांच करने के लिए कहा है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है, इस पर कार्रवाई करेंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में लागू आपातकाल को याद करके कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। गुरुवार को आपातकाल की 91वीं वर्षगांठ पर इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में भाजपा ने मनाया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने आपातकाल को याद रखने का कारण बताते हुए कहा,
4: आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम इसका प्रतिज्ञा भी करते हैं। और इसका यह उदाहरण है आने वाली सरकारों के लिए, आने वाली जमहूरियत के लिए, कि इस तरीके का दुस्साहस करने वालों का हश्र क्या होता है।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा,
5: संसद के साथ जो बदसलूकी की गई, 5 साल का 6 साल विपक्ष जेल में मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। What I am saying, all the shades of democracy were murdered during emergency. सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय।

0: तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया गया था, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना है।
1: इंदिरा गांधी का इलेक्शन रायबरेली से सेट असाइड हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला। यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। ये जब वाक्या हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए।
0: आपातकाल को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। एनसीईआरटी की किताब में एक अध्याय इसी पर जोड़ा गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सही कदम बताया है।
2: ये तो सही बात ना, एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने पढ़े समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए।
0: कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस रवैये की आलोचना की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं,
3: ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार

0: that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you. Sing it with Joybox.
1: प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज के दौर को आपातकाल बताया।
2: आनंदी जी, हमारी सरकार 2014 से लेकर और 2029 तक जो इमरजेंसी हुई है, देखते हैं हम भी कितना ये बचेंगे फिर उससे।
1: कांग्रेस पार्टी परीक्षाओं की गड़बड़ी और छात्रों की समस्या को लेकर आंदोलन छेड़ने जा रही है। गुरुवार को 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट परीक्षा और छात्रों की समस्या को लेकर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है कि पार्टी छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी।
3: कांग्रेस पार्टी ने इस देश भर के विद्यार्थियों की आवाज को सुनने के और वो जो लगातार सड़कों पर हैं आंदोलन कर रहे हैं, उस आवाज को सड़क से लेकर के संसद तक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो मुहिम, उसको बुलंदी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और इसके तहत हम देश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद एक लीफलेट जो है, एक पैम्फलेट जो है हमने तैयार किया है, इसको हम मैक्सिमम विद्यार्थियों के बीच ले जाने का काम करेंगे।
1: देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर काकरोच जनता पार्टी भी अपनी आवाज उठा रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुई काकरोच जनता पार्टी अब जमीन पर भी सक्रिय हो गई है। पार्टी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में इस संगठन का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। देश के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। सोनम ने 28 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
4: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे भारत से ये रिपोर्ट। और इस बीच हमारी श्रोता रमा जी ने कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोलकाता, यानी ये जगह जो अक्सर हमारी फिल्मों में दिखाई देती हैं और अच्छी लगती हैं। इसी तरह से ब्रिस्बेन से हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश जी। उन्होंने याद किया है कि कश्मीर जो है ना, उसका नज़ारा देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे श्रोता कैनबरा से थीरू जी ने बिल्कुल सही जवाब लिख के भेजा है कि जो गाना अभी इस रिपोर्ट से पहले आपने सुना था वो था फिल्म लम्हे का। कलाकार थी श्रीदेवी और उसका फिल्मांकन हुआ था राजस्थान के सैंड ड्यून्स पर। हेमलता जी, आपका भी संदेश मिला है। तो कार्यक्रम के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, आपकी राय और भी हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए अपनी राय भेजते रहिए और मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
5: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine at startpage.com. That's startpage.com.
6: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Árbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en árbol.com/cambiar.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए

0: हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आपसे जानना चाह रही हूं कि भारत की ऐसी कौन सी लोकप्रिय जगह हैं जो फिल्मों में अक्सर दिखाई दे जाती हैं या जिन्हें देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, और हो सकता है कि उन जगहों को देखकर उसके बारे में आप पता लगाना चाहते हों और फिर वहां जाने का भी सोच लेते हो, क्योंकि फिल्में तो यही काम करती हैं ना कि खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं और फिर हमारा दिल करता है कि उन जगहों पर जाया जाए और उन जगहों को देखा जाए। तो बस आप ऐसी जगहों के बारे में सोचिए कि आपने जो फिल्में देखी हैं उनमें कौन सी जगह ऐसी है जो आपको याद आ रही है। आपके संदेश मेरे पास आएंगे, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ, 04397997767 पर। और आइए चलते हैं भारत के एक शहर की ओर जो जब तब हमारी फिल्मों में दिख जाता है।

इस गाने को सुनकर अगर आप पिंक सिटी के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जयपुर की ही। जयपुर जिसके भव्य महल किले बरसों से फिल्मकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सिर्फ भारतीय सिनेमा नहीं बल्कि हॉलीवुड भी इसके आकर्षण से अछूता नहीं रहा, वो भी बार बार भारत का रुख करते हैं, राजस्थान और जयपुर की ओर। द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल इसका उदाहरण तो है ही। इस फिल्म में जयपुर जोहारी बाजार में त्रिपोला बाजार की तस्वीर दिखती है। तो आइए आज कुछ बात करते हैं कुछ उन फिल्मों की जिसके लिए जयपुर की लोकेशन को रखा गया। शुद्ध देसी रोमांस, ये फिल्म काफी हद तक पूरी ही जयपुर में फिल्माई गई। जल महल, आमेर किला, हवा महल और जयपुर शहर का माहौल इस फिल्म में देखने को मिला। और याद है आपको फिल्म रंग दे बसंती का गाना मस्ती की पाठशाला।

ये गाना जयपुर के नाहरगढ़ किले पर फिल्माया गया। ये किला बना था 1734 में और इसे बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कहा जाता है कि 1857 के गदर के समय कई यूरोपियंस ने इस किले में शरण ली थी। अच्छा, फिल्म बोल बच्चन को भी जयपुर के चोमू महल में फिल्माया गया था और इसी महल में फिल्माई गई थी फिल्म भूल भुलैया भी। ये चोमू महल कोई 300 साल से भी अधिक पुराना है और जयपुर का आमेर किला ये तो शायद आप सबने देखा ही होगा। ये जयपुर की शान है और इसी महल में फिल्म वीर को फिल्माया गया था। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना फिल्म वीर के एक गाने की झलक सुनते चलें।

ये गाना फिल्माया गया था जयपुर के बिरला मंदिर में। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है और ये राजस्थान में मोती डुनगारी पहाड़ी पर बना हुआ है। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर बनवाया गया था 1988 में। और जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल में फिल्माया गया गाना कोयल सी तेरी बोली, फिल्म बेटा, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित।

अपने विशिष्ट डिजाइन, लाल सैंडस्टोन से बना ये हवा महल अपने आकार की वजह से अक्सर कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। और याद करें श्याम बेनेगल की फिल्म जुबैदा, जिसे फिल्माया गया था जयपुर के नारायण निवास महल में। जनरल अमर सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था 1928 में और अमर सिंह ने अपने पिता का नाम इसे दिया। अब आजकल नारायण पैलेस एक होटल में बदल गया है। पहेली और लम्हे में जयपुर और राजस्थान का अनोखा रूप दिखता ही है। और जयपुर शहर से कुछ दूर बाहर है आमेर किला, जहां पर फिल्माई गई थी फिल्म वीर, जिसकी बात हमने पहले की, और फिल्म जोधा अकबर। आमेर किला जयपुर का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय किला है और इसे बनवाया गया था 1592 में। तो ये तो आप जान ही गए कि हमारी फिल्मों के लिए जयपुर और राजस्थान कितना लोकप्रिय है। और अब आइए सुनते चलते हैं फिल्म जोधा अकबर का ये मधुर सा गीत भी।

0: गुलशन में।
1: श्रोताओं, जानना चाहूंगी कि कैसे लगा आपको आज तक का, अब तक का कार्यक्रम? क्या ऐसा रंग लिए कुछ जगहों के बारे में आप आगे भी सुनना चाहेंगे जिसमें उन जगहों की खूबसूरती की बात तो हो, यानी फिल्मों के गानों के साथ साथ आप उन जगहों का आनंद भी लेते चले और उसके इतिहास का पता भी चलता रहे? तो मुझे आप अवश्य बताइएगा कि आपकी राय क्या रहेगी। और हाँ, इस बीच हमारे श्रोता ब्रजेश जी को आज याद आई है बचपन की भी। कैसे? वो यूं कि मुंबई के गोरेगांव में था छोटा कश्मीर, जहां 80 और 90 के दशक में शूटिंग हुआ करती थी, है ना? क्या आपको पता था इसके बारे में? इसी तरह से कई ऐसी जगह हैं जो एक नए रंग को लेकर कर दी जाती हैं, जो असली में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, वहाँ सेट्स लगा दिए जाते हैं और उसकी शूटिंग वहाँ पर, लगता है कि हम उस जगह पर हैं जिस जगह की ये कहानी की बात हो रही है। अब चूंकि आज बात हम कर रहे थे जयपुर की, राजस्थान की, तो उसी प्रदेश में यानी राजस्थान की ही लोकेशन पर एक फिल्म बनी थी। अब उस फिल्म की बात तो मैंने की है जब मैं जयपुर की बात कर रही थी, तो याद कीजिए उस फिल्म का गाना। याद क्या कीजिए, बल्कि सुनते चलिए।

श्रोताओं, हम सबके जीवन में यूं ही खनक बनी रहे, खुशियां बिखरी रहे, बस इसी कामना के साथ आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूं। अगली मुलाकात तक के लिए आपको अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, तुसी फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हो कि नहीं जरूर दसना। पर अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम है ओह जिवें कि मैं शो दी स्टार्टिंग विच कहा सी, टैक्स स्पेशल है। टैक्स नूं लैके जे तुहाडे वी कोई सवाल होण तुसी पुछ सकदे हो। अज साडे नाल टैक्स माहर शो दे विच मौजूद होणगे। उस तों इलावा अज असीं तुहानूं दस्सांगे कि जुलाई 1 तों किहड़े किहड़े बदलाव आउण वाले। इन्हां बदलावां बारे तां इस ब्रेक दे उस पार पूरी खास पेशकारी लैके मैं हाजिर होण ही वाली हाँ। जिवें हुण वेला हो गया जी इक छोटा जिहा वखवा लैण दा। जाते जाने तुहानू ए भी दस दईए कि फीफा के जिन्हें भी मैच ने फीफा वर्ल्ड कप तुसी लाइव देख सकते हो SBS टीवी के उत्ते या फिर ऑनलाइन SBS ऑन डिमांड उत्ते। SBS ऑन डिमांड तुसी टीवी ते लगा सकते हो, फोन ते डाउनलोड भी कर सकते हो एदा ऐप ते। SBS ऑन डिमांड ते SBS पंजाबी दे प्रोग्राम भी मौजूद ने। मिलते हैं जी इस छोटे जे ब्रेक तो बाद।
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Business.

0: मैं सिंपल भाषा च दसदी हाँ, जे कोई एसेट खरीदते हो जिहड़ी 20,000 तो नीचे नीचे उहदी वैल्यू है 20,000 तक दी, उह तुसी डायरेक्ट ही अपने टैक्स रिटर्न दे विच क्लेम कर सकदे आ स्मॉल बिजनेस ओनर, जे तुसी GST लई रजिस्टर्ड हुंदे हो। सो इह कदी 1.5 लाख सी, हौली हौली कटदी कटदी हुण 20,000 तक आ गई आ, ते इह गवर्नमेंट ने डिसाइड कीता है ऑन गोइंग ही रहेगा फर्दर जद तक कोई चेंजिस नहीं आउंदियां।
1: जी, ते ऐसी केड़ियां चीजां ने जो अपने भाईचारे च उन्हां नूं लगदा कि इहदी डिडक्शन मिल सकदी है लेकिन असल च उहदी डिडक्शन नहीं मिल सकदी, जो अक्सर असीं गलती करदे आं फाइल करदे होए?
0: जी, अगर मैं सिंपल भाषा च कहां ते 3 गोल्डन रूल्स ने उहदे, कि उह इंकर वी होया होवे और तुहाडे इंपलॉयर ने वी ना पे कीता होवे और तुहाडे वर्क रिलेटिड होवे एक्सपेंसिस। सो ये 3 गल्लां दा आपां ध्यान जरूर रखिए और कंपेयर ना करिए, क्योंकि अपने भाईचारे दे विच जदों आपां टैक्स फाइल करीदा है ते कंपैरिजन जरूर हुंदा है कि उहदा टैक्स रिफंड ज्यादा आ गया ते मेरा घट आंदा पिया है, क्योंकि हर एक दा फैमिली स्ट्रक्चर, उहदी इनकम, उहदा टैक्स विद हैल्ड और उहदा प्राइवेट हैल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, इह हर चीज़ मैटर करदी जदों आपां टैक्स प्रिपेयर करदे आ। सो एक टैक्स एजेंट या अकाउंटेंट ने अपने कंपलायंस रह के काम करना हुंदा है, ते दे ट्राई देयर बेस्ट कि आपां वधिया सारा कुछ लॉज करिए, बट कंपैरिजन बहुत हुंदा है।
1: जी, ते तुसीं 3 चीज़ां दा ध्यान रखण नूं कहा, विचों इक सीगा कि बिल सांभ के रखणे आ, ते जे मान लो जेन्युइन खर्चा होवे, क्लेम वी कर लिया होवे पर हुण बिल नहीं हैगा, अजिहे केस विच की हो सकदा?
0: रिसीट्स होणियां जरूरी आ। अगर बाई चांस तुसीं क्लेम कर लिया ते गवर्नमेंट दा ऑडिट हुंदा है, टैक्स ऑफिस दा ऑडिट हुंदा है, ते तुसीं प्रोवाइड नहीं करदे ते उहदे उत्ते पेनल्टीज और उह एक्सपेंस ते एलिमिनेट कीते जाऊगा, उत्ते पेनल्टीज वी लग सकदी है।
1: जी, ते ऐसे केड़े चीज़ां ने जिहड़ी अक्सर लोग नहीं क्लेम करते, उन्हां नूं नहीं लगदा कि ओह अच्छा है भी क्लेम कर सकते सी, लोगों नूं पता ही नहीं है, ऐसी भी कोई 2-3 चीज़ां होण तां उहदे बारे भी थोड़ा जिहा दस्सो।
0: वैसे तो सारे लोगों नूं काफ़ी कुछ पता ही हुंदा है कि क्लेम की कर सकते हैगे आ, बट यूनियन फीस दे बारे या फिर वर्क टूल्स बारे कुछ और इंश्योरेंसिस बारे, जिस तरह कि कईयां नूं अपनी इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लैके रखनी पैंदी है, कई चीज़ां नहीं पता, बट असी मेक श्योर जरूर करीदा है कि आपां लिस्ट गो थ्रू कर लीए जां उहदे काम नाल रिलेटिड कर लीए। बाकी ते वर्क फ्रॉम होम एक्सपेंसिस सारे जो भी वर्क रिलेटिड हुंदे उह कर रहे ने एक्सपेंसिस।
1: विक्टोरिया विच तां वर्क फ्रॉम होम 2 दिन हफ्ते दा मिलेगा ही मिलेगा, इह सारे लई हुण कानून हो गया, ते वर्क फ्रॉम होम विच किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां आ, वाईफाई, टेबल, कुर्सी, पेन, की कुछ है जो डिडक्ट कर सकदे आ?
0: हांजी, वर्क फ्रॉम होम दे विच इंटरनेट, टेलीफोन, ये सारा कुछ इनकलूड ही हुंदा है, स्मॉल स्टेशनरी आइटम्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग कर दी कहिए, वो आपां अलग तो नहीं क्लेम करना हुंदा। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्क फ्रॉम होम तुसी क्लेम करदे पे हो ते आपां अलग तो यह एक्सपेंसिस जिवें कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन अलग तो नहीं कर सकते हो, वो सब कुछ इनकलूड करके ही गवर्नमेंट ने एक जड़ा परसेंट मैथड रेडी किया है, उहदे विच रह के तुसी अपने आर्स नूं मल्टीप्लाई कर सकते हो।
1: जी, अपने भाईचारे च कई बार लोग कैश ते भी काम करदे आ, ते कैश ते काम नूं लैके इक गलत धारणा है कि शायद इहदा टैक्स नहीं देना हुंदा, इस धारणा नूं भी दूर करो, ते कैश ते जिहड़े लोग काम कर रहे ने ओह किद्दां भर सकदे आ टैक्स?
0: सो जिहड़ी भी जॉब है, कैश जॉब्स है, ओह रिपोर्ट करनी जरूरी है, ते ओह तुहाडी टैक्सेबल इनकम अगर तुसी ABN ते भी करदे हो ते तुहानूं कैश रिसीव होया है उहनूं तुहानूं रिपोर्ट करनी पऊगी उहदे विच, अगर तुसी कैश करदे हो, क्योंकि शैडो इकोनमी ते टैक्स गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी आ दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट और नज़र रखती पई है, और वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ईवन कि तुहानूं अगर Airbnb तों या फिर कोई ऊबर ईट्स तों या कोई होर प्लेटफॉर्म तों भी इनकम मानदी पई है, उहदे ते भी गवर्नमेंट नज़र रखती पई है, मैच करती पई है थ्रू डेटा मैचिंग प्रोग्राम, ते मैच करके अपने आप ही ऑडिट की लैटर तुहानूं घर आ जाती है। सो मेक श्योर अगर तुसी वेरियस प्लेटफॉर्म्स ते काम कीता है जिवें कि Airbnb, ऊबर ते, ते मेक श्योर अपनी इनकम जरूर रिपोर्ट कर दो इनकम दे विच, क्योंकि कोई भी इनकम, ईवन कि क्रिप्टो दियां बहुत लैटर्स आंदियां पईयां, अगर क्रिप्टो दे विच भी इन्वेस्ट कीता है ते क्रिप्टो दियां लैटर्स भी काफ़ी आंदियां पईयां, ते मेक श्योर तुसी कोई भी इनकम अगर कीती है ते उहनूं अपनी टैक्स रिटर्न दे विच रिपोर्ट करो।
1: जी, ते कई लोग जो अपना टैक्स आप भरदे आ उहनां लई भी वख वख तरीके भी हुंदे आ, पेपर दे राहीं भी कई लोग कर सकदे, ऑनलाइन भी कर सकदे, उहदे बारे भी थोड़ा जिहा दस्सो।
0: जी जी, माई गव दे नाल तुसी लिंक करके आस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस दा पोर्टल लिंक करके तुसी आप भी प्रिपेयर कर सकदे हो ते टैक्स लॉज कर सकदे हो, बट पेपर लॉजमेंट इज थोड़ा जिहा आउटडेटिड है, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू लॉज इट, आपां लॉज करदे हां। काफ़ी साल जिहड़े पुरानियां टैक्स रिटर्नस ने, मे बी 2009 तों पहला वालियां सॉफ्टवेयर सपोर्ट ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਲੌਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਬਿਲੀਵ